0: मेरे नाल है बट हाउ डू आई नो ही इज मेरे नाल।
1: बेटा वाहेगुरु नूं अपनी जिंदगी विच वसाउणा पैंदा है। यू हैव टू मेक वाहेगुरु अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ।
0: बट हाउ नानाजी?
1: यू हैव टू डिवेलप अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वाहेगुरु इन योर लाइफ। डिवेलप अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हिज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस। उस्तुत मन में कर निरंकार। इन योर हार्ट, योर फीलिंग्स, इन योर लव फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ऑलवेज फील वाहेगुरूज प्रेजेंस। आपदे चरण उसके मार्ग से रखो, अपने मन विच उसनु वसाओ, अपने दिल विच उसनु वसाओ, अपने कन्ना नाल उसनु सुनो, अपनी जीव नाल उसका नाम लवो, अपनी अखां नाल उसनु हर एक विच देखो। यू हैव टू ट्रेन ऑल योर सेंसेस इन बिकमिंग अवेयर ऑफ वाहेगुरु। इन दिस नेक्स्ट शब्द फॉर एग्जाम्पल इट सेज वॉक ऑन वाहेगुरूज पाथ, फील वाहेगुरु, डिवेलप लव फॉर वाहेगुरु, हेयर वाहेगुरु, टेस्ट वाहेगुरु, से वाहेगुरु, टच वाहेगुरु, सी वाहेगुरु इन हिज क्रिएशन ऑल अराउंड यू, इंक्लूडिंग इन योर सेल्फ एंड इन एवरी वन अराउंड यू। सी वाहेगुरु इन एवरीथिंग दैट यू डू। वेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, रिमेंबर वाहेगुरु। वाहेगुरु इज विथ यू इन स्कूल, वाहेगुरु इज एवरीवेयर, इन एवरीथिंग एंड विथ इन यू। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ वाहेगुरुज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस एंड देन यू विल नो दैट वाहेगुरु इज ऑलवेज विथ यू।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराण दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

0: अंतन पापत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत
0: न पावत देव सबे अंत न पावत देव सबे

सारे जाने ओदे चरणा दे नाल ध्यान लाइए, ध्यान नू जोड़िए ते सरबत दा भला मंगिए। ते पातशाह फरमान करदे हन।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग गया।

कोई गरीब है, गरीबी घर विच एडी एडी है कि अपने मोढ़ियां तो भी उची हो गई है। ये जो गोलक है, ये गुरु घर की जो माया है, ये इना गरीबां वास्ते, मजलूमां वास्ते, लंगर वास्ते, जो पीड़ित लोग हन, ये सत्संग जीओ, ये जो गोलक है,

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई।
1: गुरु रामदास राखो सरनाई।
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रसपिन्नी आवाज विच
1: राखो सरनाई।
0: ए पेशकश

दो महीने बाद आया था खाली। जेड़े सिख होंगे ना जी संगत बिच ही एक दूजे दियां शिकायतां लाने वाले आखो सतनाम। वेख लो गुरु घर गुरु वेले भी उस समय भी मजूस कहते जेड़े शिकायत लाने वाले सी ना जदों नमस्कार की भाई गड़िए ने ते वो शिकायत लाने वाले कहते गुरु हरगोबिंद साहब जी नू महाराज इनू तुसी कार भेटा लैन भेजे सी कश्मीर इनू पुछो सेवा कित्थे है कि गुरु कितने भुल ना जाए तो झिड़का रह ना जा अंदाजा लेना बाबा ईश्वर सिंह जी के बचन पल्ले च रखना चार तरह के बंदे संगत च आते ने ऊंगे सूंगे चूंगे डूंगे एक आते ने सौगे आ गया या अके उके आ गए चल वीरवार हो आने फसांगे चल घूंगड़िया छागे बारों लंगर तो हम कंट्रोल किया नहीं तो अगे लंगर वाला बड़ा काम से दादा भी जहा लग जाता घरद्या चाह पहले पीनी पैंती सानू भी बाद सौ बंदा नाल पै जाता सी रूटीन बनाई भी पहले चाह छक लो वापसी के नाल ही निकल जाओ ऊंगे तो टिप्पी ला दो उगे अके उके ऊंगे कर दो सुते दूसरे आते सूंगे गलतियां लगन हक सतना सूंघन आते ने गलती की हो रही। बाबा ईश्वर सिंह जी बचन करते सी कहिंदे गुरु नानक दियां दुकानां डट के खोलो डट के प्रचार करना है डट के कार्ज करने हैं जेड़ा काम करे गलती उहदे कोल हुंदी काम नहीं छड्डणे आखो सतनाम। एक ने सूंगे एक ने चूंगे ते एक ने डूंगे शब्द दा रस चूंघण आले अपने अंदर कमी लभण आले डूंगी चुभी मार के डूंगे अर्थ लब के घर च लिजाण आले ये अरदास करो जदों संगत चाहिए या चूंगिया चाहिए या डूंगिया छेवें पातशाह शरीर करके जो धरती ते सी उदों ही शिकायतां लाण आले विच चख सतनाम। कहिंदे सतगुरु जी इनू पुछो कार बेटा किथे कि भी इनू झिड़कां पैण ते सानू शांति मिलेगी सानू ठंड पएगी। जदों उन्होंने कहा सतगुरु इनू पुछो कार बेटा किथे है तो सतगुरु का जवाब जरा लिख लेना हिरदे की डायरी से सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब हस पे ते हस के कहंदे सिखो भाई गड़िया ते अज आया साडे कोल अज इहदी कार भेटा ते कई महीने पहले सानू पहुंच गई है सतगुरु तुहाडे कोल किवें पहुंच गई किसे दे हत्थ भेजदा रहा सानू ते पता ही नहीं कहते किसे दे हाथ नहीं भेजदा रहा ये जिन्ना भी मदद करता रहा मैनू पहुंचती रही गरीब का मूह गुरु की हाज तुसी अपने इलाके च जां कोई क्योंकि ये जेड़ा दसवंध कढ़ना ना जे तो किसी की विद्या से ला दो या थोड़ा जुगती ना सोच समझ के ला दो टिकाने लगे ये जरूर गलत पासे ना लग जाए बीज गलत बोया जाए फिर उस तरह ही फल सही जगह बोया जाए सही जगह लग जाए सही मिट्टी मिल जाए सही पानी मिल जाए सही बीज हो उस तरह। बाकी तुसी ये साखियां सुनिया ही नहीं सारी पा दुध दान करना हो सप्प नूं प्या दे उहदे अंदर जहर बनता किसी गुरसिख नूं प्या दे उहदे अंदर अमृत बनता दुध ते पा ही दान कीता ये करना कित्थे है ये तुसी देखना भाई ये जरूरी जितने भी माई भाई बैठे गुरु प्यारे हो दसवंध कढ़ना भी है ते लाना किथे है किसे दी विद्या दा साधन बनो किसे अत गरीब अत गुरसिख कोई नाम जपना लै आखिर पखों डिगा पिया जरूर चुको एक गुरु नूं पहुंचदा अगे बचन सुनाई दे कई बारी कई नवे बैठे होंदे दिल्ली तकरीबन रेड लाइट जिथे गड्डियां खलोण नहीं

करती है। ऐ मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाएं। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी उस वेले तू अरदास करदा सैं, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, मैं तेरा सिमरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भुल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

मुंह कालख भरी है वड़ी है कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरी है कल्लर खेती बीजी है केहो काज न सरी है टूटी पिंगे पिंगी है पैटोए मरी है कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरी है अगला है मंदर समय तिस नाल न फरी है।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए, फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए, व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए, विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए, मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे, अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे, अपन हथी

ये सिर छार उड़ावे, तुम में अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग न पाए, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

डोरी देख के कर दे परवासा, थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा होना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आंदा है। और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खून।